0: 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। और आज के दिन की शुरुआत एक शानदार गोल्ड के साथ हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक गोल्ड के साथ। दोस्तों, दिस केम इन द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहाँ वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री एट द एशियन गेम्स, विनिंग गोल्ड इन द वुमेन्स रिकर्व टीम इवेंट आफ्टर डिफीटिंग द ह्यूज giant South Korea in a thrilling final. We also saw Kumkum Mohammed was the star of the final, showing remarkable composure under pressure. The 17-year-old repeatedly delivered crucial tens when India needed them most, including the decisive shot that sealed the gold medal. Ankita Bhakat provided valuable experience and consistency, while Kirti had moments of pressure during the final, but India's collective effort proved decisive when this was the first time in history that India ever reached the final of this event. Anupam.
3: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कंपाउंड आर्चरी में किया था, वैसे ही आज रिकर्व में भी हो रहा है। रिकर्व थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म है और आप तो बता ही चुकी हैं, स्वर्ण पदक आ गया और एक और स्वर्ण पदक पर पूरी पूरी निगाहें हैं। यह है मिक्स्ड इवेंट, जिसमें आज भारत की टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला। सेमीफाइनल में जापान को 5-3 के स्कोर से हराया और इसी वक्त चल रहा है उसका फाइनल, और इसमें पीछे है भारत चीन से और ये बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। और बल्कि इसमें सारे शूट्स हो चुके हैं, सारे तीर मारे जा चुके हैं और लगता है भारत इसमें अब पीछे रह गया है। 2-4 से पहले पीछे था और अब 3-5 से पीछे हो गया है, यानी रजत पदक, फिर भी एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, और इसके अलावा अभी मेंस टीम तो बाकी है।
2: करेक्ट एंड कमेंडेबल स्टार्ट टू द डे। इनफैक्ट भारत के एंगल से रग्बी सेवंस के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इंडिया प्रोड्यूस्ड अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस टू डिफीट मलेशिया 26-5 इन द वुमेन्स रग्बी सेवंस पूल ई मैच एट द एशियन गेम्स। भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज, व्हाइल टुडू, संध्या रानी एंड कुमारी आरती ऑल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री ओवर मलेशिया।
3: बिल्कुल, और अब हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा आपको और भी बता सकते हैं। इसमें धीरज देव बुमरा, जो विश्व में नंबर 1 की पदवी रखते हैं, वो थे और साथ में कुमकुम महोद थी। बहुत लड़ाई की, बहुत अच्छी लड़ाई की, और हम कहेंगे सेमीफाइनल तक पहुंचना और फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक स्वर्ण पदक और दूसरा रजत पदक। इसके अलावा कुश्ती में हम बात करते हैं, कुश्ती में आज बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। फ्री स्टाइल के मुकाबले थे, भारत के 4 पहलवान थे। सबसे पहले प्रिया 60 किलोग्राम में कजाक की काइजी मेडट से हार गई और ये चित होकर हारी, यानी कि विक्ट्री बाय फॉल मिली मेडट को। और 50 किलोग्राम में दीपांशी, वो जापान की यूई सुशाकी के विरुद्ध थी और ये भी टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर यूई ने मुकाबला जीत लिया। और इसके बाद 125 किलोग्राम में रजत राहुल, ये कुश्ती जरूर थोड़ा सा उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वो हार बैठे मुकाबला पॉइंट्स अंकों के आधार पर। लेकिन 65 किलोग्राम में, जिस पर सबसे अधिक उम्मीदें थी, सुजीत, उन्होंने अफगानिस्तान के उमर सैयद को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर परास्त किया और इस समय उनका मुकाबला चल रहा है ईरान के अब्बास इब्राहिम के साथ। और ये पहला राउंड है और देखते हैं इसमें क्या होता है, बस इसकी शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में।
2: राइट, गुड न्यूज, वन गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। नाउ लुक, लेट्स हैव अ लुक एट वॉलीबॉल आल्सो। इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया 3-1 इन द मेंस वॉलीबॉल 5th-8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच। इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23। इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23।
3: बिल्कुल, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर आई है। वॉलीबॉल में भारत ने अपने पूल में सारे मैच जीते थे। भारत वॉलीबॉल में एक अच्छी टीम है, हालांकि 3 कांस्य पदक आते रहे लेकिन इधर करीब पिछले 20 साल से कोई पदक नहीं आया है। और अब वो हार गए थे उसके पश्चात पाकिस्तान से, और अब वो 5वें से 8वें स्थान के लिए क्लासिफिकेशन मैच खेल रहे हैं, जिसमें से पहला मैच उन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से, यानी लगातार सेट्स में हरा दिया है। अब 5वें और 6ठे स्थान के लिए उनकी लड़ाई होगी, अगला मैच होगा।
2: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट, वेयर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू 3rd प्लेस आफ्टर चाइना, हु वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2 रेसेस। इंडिया हैड इनिशियली फिनिश्ड 4th एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस, बट द सबसीक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम। सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट टीम आल्सो।
3: बिल्कुल, समय कम है लेकिन इतना बता दें, सबको इंतजार दौर है आज हॉकी का, जिसमें भारतीय लड़कियां स्वर्ण पदक पर निशाना साधेंगी। चीन के विरुद्ध मैच होगा। इसके अलावा बॉक्सिंग में 3 फाइनल्स हैं, तो हमारी अपडेट्स के साथ बने रहिएगा
2: जी। और जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज भारत की पोजीशन क्या है दिन की शुरुआत पे ऑन द मेडल टेबल, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इंडिया हैज मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द 7th स्पॉट। जी हाँ, 7वें स्थान पर अब भारत आ चुका है। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 67 मेडल्स हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज है। ऑल थैंक्स टू द फैक्ट दैट आज शूटिंग ने सुबह सुबह हमें एक और गोल्ड दिला दिया। और आपको बता दें, सिर्फ शूटिंग, सॉरी, यस, आर्चरी ने हमें एक और गोल्ड दिला दिया।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, इतने जबरदस्त बीट्स और दोस्ती भरे गाने के बाद तो सुस्ती का नामो निशान मिट गया होगा, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 10 और मैं हाजिर हूँ आपके अपने अड्डे यानी कि नॉन स्टॉप गपशप पर, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर, यानी कि मैं हूँ आज आपकी होस्ट दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को। तो दोस्तों, आज तारीख है 2 अक्टूबर, तारीख एक, लेकिन जश्न हमारे देश के 2 सबसे अनमोल हीरो का। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने धोती और चरखे से पूरी दुनिया को हिला दिया, और दूसरी तरफ जय जवान जय किसान वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जी बिल्कुल, जिन्होंने सादगी और स्वाभिमान के द्वारा अपने हिमालय जितना कद को ऊंचा रखा। वैसे दोस्तों, आज के फिल्टर वाले जमाने में हम सोचते हैं कि जिसके पास सबसे महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी या फिर लेटेस्ट फोन है, असली स्वैग उसी का है। लेकिन हमारे इन दोनों महानायकों ने साबित किया कि असली स्वैग तो सादगी में है। तो दोस्तों, आज नॉनस्टॉप गपशप पर दिखावे की पूरी छुट्टी है। जी हाँ, बात होगी सीधे दिल से। तो मुझे जल्दी से फोन उठाइए और कॉल कीजिए और बताइए दोस्तों कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा सादा सुख है जिसके आगे महंगे होटल, नए गैजेट या दिखावा बिल्कुल फीका लगता है। बिल्कुल दोस्तों, लाइनें खुली है और अपने जवाब जब तक आप नंबर डायल करके हमारे साथ जुड़े तो क्यों ना अगली गपशप के सफर को बढ़ाते हुए अगले नगमे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ नगमे की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा फोन नंबर, जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 2213-1341, यानी कि 2213-1341। तो दोस्तों, जब तक इस लाइन पर आप कॉल करके अपनी बातें बताते हैं कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा सादा सिंपल सा सुख है जिसके आगे महंगे होटल, नए गैजेट का दिखावा बिल्कुल फीका सा लगता है। तो चलिए दोस्तों, जब तक आप सोच कर नंबर डायल करते हैं, तब तक अगले गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।
1: हेलो, सुप्रभात, बोल रहा हूँ। ज्योति जी, आपने आज एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। बापू ने हमेशा जो पथ पे हम लोग को सराहा है और बोले हैं, तो शायद आज के जिंदगी में थोड़ा हम लोग हटके, मतलब काफी दूर चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गैजेट वाली दुनिया है, ये जो चकाचौन वाली दुनिया है, इसके बाहर भी एक, मतलब बोलते हैं ना, द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। तो वो मुझे लगता है मेरी जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो मुझे सबसे सुकून देता है, वो है घर और परिवार के लोग, जहाँ पे आज गैजेट ने ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि हम लोग बहुत कम बातें करते हैं और देखते ज्यादा हैं। तो जैसे कि मेरे फैमिली में एक रूल है, सेट रूल है कि रात का खाना एक साथ खाना, वहां पर कोई फोन नहीं होगा, बातें होंगी जी, और सारा दिन में जो घटनाएं घटी है लाइफ में वो डिस्कशन होगा और जो फैमिली बातें हैं वो होगी। और मेरे में एक बुरी आदत हो चुकी है मोबाइल के चलते कि मैंने किताबें पढ़ना थोड़ा कम कर दिया।
0: अच्छा।
1: और वो मुझे लगता है मुझे बहुत खटकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रात के टाइम में जब सोने से पहले थोड़ा किताबें पढ़ लूँ। तो और एक चीज जो मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ, जो बचपन में बहुत मिलता था मुझे, कि सुबह उठ के एक ऐसा नजारा देखना, क्योंकि हम लोग बचपन में जहाँ रहता था वहाँ के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो क्योंकि चिड़िया की आवाज तो अभी सुनने को भी नहीं मिलता है। तो वो जो छोटी छोटी बातें हैं, जो सादगी वाली बातें हैं ना, वो बहुत मिस करता हूँ। लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो हम लोग की शो ऑफ की दुनिया है, जहाँ पर हम लोग कोशिश वो करते हैं, वो एक्चुअली हम लोग नहीं है। चाहे आप कहीं रील देख लो, कुछ भी वीडियो देख लो, आप लोग, आपको लगेगा वाह इसका जिंदगी इतना मस्त है, इतना कंफर्टेबल है, लेकिन उनके एक्चुअल लाइफ में शायद ऐसा घटना घट रही है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग वही स्ट्रेस देते हैं कि यही है जिंदगी, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। तो मेरे लाइफ में तो वही चीज

0: है कि मैं अपने परिवार के साथ जितना भी, ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि जितना पैसा कमाओ उतना सुख है, लेकिन एक्चुअली वो उल्टा है, उतना ही कमाओ जहां पर ऐसा फील ना हो कि परिवार ही नहीं है मेरे साथ, दोस्त नहीं है मेरे साथ, सब खाली हो चुके हैं। तो वो चीज मैं ध्यान रखता हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ कि उस पे टिका रहूँ कि ऐसा ना हो मेरे साथ, मैं बहक ना जाऊँ।
1: सुभाषी जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की,
0: शुक्रिया मैम।
1: और आपकी सोच को सैल्यूट है, बहुत ही अच्छी बातें आप सोचते हैं
0: जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सादगी के उस स्वैग की, जिसमें जिसकी मिसाल बापू और शास्त्री जी थे। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन खाना हमेशा वही देसी और सादा, दाल रोटी और मौसमी सब्जी। और आज हमारा हाल देखिए, फैंसी कैफे में जाकर कुछ 400-500 रुपए की कॉफी पी लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कप के साथ एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली जा सके, जबकि आत्मा की असली तृप्ति तो नुक्कड़ की वो 10 रुपए वाली कुल्हड़ चाय और अदरक के स्वाद पर मिलती है। तो दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं इस बातचीत से और अब आप भी बता सकते हैं अपना सादा सा सुख। लेकिन जब तक आप कॉल करके अपनी बातें अब तक पहुंचाते हैं, तो चलिए सुनते हैं ये दिलकश धुन।

0: चलिए दोस्तों अपने अगले कॉलर से जुड़ते हैं और उनसे उनकी यादों को ताजा करते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग। मैं मोनिरुद्दीन बोल रहा हूँ, दक्षिण सांकेत हावड़ा से।
2: जी, खूब स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम।
1: सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपके साथ बात करके जो सुकून मिलता वो तो कोई भी नहीं मिलता। और आपका जो टॉपिक है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट खाया है कलकत्ता में, बहुत अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरा माँ का हाथ में जो खाना का टेस्ट है कभी कहा नहीं मिलता है। तो हमारे लिए बहुत कीमती है, अभी हमारा माँ गुजर गया, लेकिन हमारे दिल में रहेगा।
2: लेकिन आपने बहुत ही प्यारी सी बात छेड़ी है कि माँ के हाथ का जो ज्यादा खाना है वो कभी और नहीं मिल सकता।
1: क्योंकि मेरा बहुत सेलिब्रेशन में गया, बहुत रेस्टोरेंट में गया, क्योंकि घर का आटा हाथ में खाना अच्छा बोलने के मौका दिया और इतने अच्छे अच्छे गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो दोस्तों स्टूडियो में वक्त हो चला है 10:24 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, यानी कि बातों और गीतों का सिलसिला चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो दोस्तों यही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपने इस कार्यक्रम में, यानी कि अपनी होस्ट दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो दोस्तों अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विश्व एशियन गेम 2026 की अपडेट्स यानी कि और ठीक 10:35 पर मैं आपसे जुड़ चलूंगी यानी कि कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में यानी कि बस थोड़ी ही देर के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन बातों और गीतों का सिलसिला चलने वाला यही ठीक सुबह के 11 बजे तक।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: आज दिन की दूसरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। 20वें एशियाई खेलों में दिन क्या शानदार है रहा है भारत के लिए अब तक। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। पहली अपडेट में हमने बताया कि आर्चरी की रेंज से स्वर्ण पदक आया, रजत पदक आया और उसके बाद अब बॉक्सिंग का रिंग लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है और क्या शानदार जीत है उनकी। पिछली बार भी उनके पास पदक था, वो सिल्वर था। इस बार उन्होंने चीन की जी बाओ को परास्त किया। उनके मुक्कों का दम देखा सारी दुनिया ने। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में जरूर थोड़ा मुश्किल से उनको हुई थी, लेकिन आज वो पूरे फॉर्म पे थी और स्वर्ण पदक एक और भारत को।
2: जी, और अगर रेसलिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसी न्यूज को आगे बरकरार रखते हैं। भारत के सुजीत कलकल ऑल्सो एडवांस टू द मेन्स फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल विद अ डोमिनेटिंग 10-0 विक्ट्री ओवर ईरान अब्बास इब्राहिम जदे।

0: बाई टेक्निकल सुपीरियोरिटी सुजीत को सिर्फ 30 सेकेंड चाहिए थे ऑफ द सेकेंड पीरियड टू फिनिश द क्वार्टर फाइनल एडिंग टू मोर पॉइंट्स टू कंप्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन और इसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अब प्रवेश कर लिया और आपको ये भी बता दें कि सेमीफाइनल का बाउट भी शुरू हो चुका है जिसका हो सकता है हम आपको अपडेट इसी अपडेट
1: जी, में बिल्कुल मैं तैयार हूँ इसके लिए
0: जरूर
1: ये उनका मुकाबला हो रहा है जापान के कोतोरो कियोका से और पहला पीरियड में बहुत बढ़िया दाम लगाए वहां पर सुजीत ने एक समय तो 5-2 की बढ़त ले ली लेकिन वहां पर चैलेंज किया जापान के पहलवान ने और वो दो अंक चैलेंज को मान लिया गया वापस कर दिया गया 3-2 से बढ़त थी इसके बाद जापानी ने एक बढ़िया दाम लगाया 3-3 की बराबरी मुकाबला बस अभी खत्म हुआ है ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन लग रहा है अंकों के आधार पर सुजीत अब फाइनल में पहुंच गए हैं कंफर्मेशन बस होने वाली है
0: चलिए थोड़ा इंतजार रहेगा कंफर्मेशन का उसका लेकिन टैक्वांडो की दुनिया से आपको बता दें कि भारत का सफर इसके अंदर आकर आज समाप्त हो गया इंडिया कशिश मलिक सफर्ड अ 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान्स रीता बक्शेवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच्ड बिटवीन द टू कॉम्पिटिटर्स
1: और इसके अलावा साइकिलिंग में आज तमाम मुकाबले हैं सुबह से ही वेलोड्रोम जो है गुलजार हो जाता है आज भारत कई स्पर्धाओं में महिलाओं के ओमनियम में हर्षिता जाखड़ वो 12वें स्थान पर रहीं और कुल 13 लोग ही थे तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकी अब पुरुष किरण में रोनाल्डो सिंह थे वो क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई वो भी नहीं कर सके लेकिन डेविड बेकहम उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया उन्होंने क्वालिफाई किया और वो पहुंच गए हैं अगले चक्र में लेकिन इसके बाद रिपेचेज में डेविड ने क्वालिफाई किया है और रिपेचेज में रोनाल्डो को भी मौका मिल गया और रोनाल्डो ने यहाँ पर बढ़िया खेला छठे स्थान पर आए और अब वो सेमीफाइनल चक्र के लिए पहुंच गए यानी उनकी साइकिल के पैडल अभी चलने वाले हैं भारतीय साइकिलिस्ट के
0: उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी खबर लेकर आए वो भारत के लिए आगे बढ़ेंगे सेपेक्टक्रो की तरफ भी दोस्तों आनंद ग्रुप ए मैच ऑफ द सेपेक्टक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड हैव एब्सोल्युटली डेसिमेटेड इंडिया जी हाँ दे टुक द सेकंड सेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स दे वर ड्राउन 13-15 by their opponents in the first set as they lost it earlier. India have thus bowed out of the event after losing all three of their group games. जी हाँ, भारत का सफर इसके अंदर भी समाप्त हो ही गया।
1: और रेसलिंग में एक खबर और भी है अच्छी खबर है दीपांशी हार गई थी 50 किलोग्राम भार वर्ग में आज लेकिन उनको मौका एक और मिल गया है रेपेचेज में और कंबोडिया की पहलवान के साथ उनका मुकाबला बस इस समय शुरुआत हो गई है देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है
0: जी और आपको याद दिला दें कि आज के दिन की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ हुई थी जहां पर आर्चरी ने हमें आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रदान किया अगर हम बात करें गोल्ड की तो पहली बार आर्चरी की हिस्ट्री में एशियन गेम्स में ऐसा हुआ है कि भारत की टीम फाइनल के अंदर पहुंची और हम बात करें विमेंस रिकर्व आर्चरी टीम की जिसने आज हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द गोल्ड thereby defeating South Korea in a very thrilling final. वहीं पर अगर हम recurve mixed team के final उसकी भी बात करें finals की भी तो उसमें भी हमने देखा कि भारत ने आज हमें उसके अंदर भी एक silver पदक ला के दिया. So recurve mixed team के अंदर we were able to satisfy ourselves with a silver
1: medal. और ये और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि Korea जो है वो powerhouse है. Korea 10 बार champion रहा है उस team को परास्त करना और इस अंदाज से परास्त करना बहुत ही शानदार लड़कियों ने गजब करके दिखाया
0: जी और मिक्स टीम सेमीफाइनल मिक्स टीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी गॉट द सिल्वर आउट देयर डेफिनेटली बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर गुड न्यूज ऑफ द डे आल्सो और शुड आई से a nice news that's coming up away which is in rugby sevens jahan india produced a dominant performance to defeat malaysia 26-5 in the women's rugby seven pool e match at the asian games bhumika shukla scored 3 tries while tudu sandhya rani and kumari aarti also crossed the line as india secured a comfortable victory
1: sakshi bahut achhi baat isliye bhi hai ye kyunki rugby seven ka pehla match jo kal bharat ne khela tha bahut buri tarah haare the usko dekhte hue aaj utni hi achhi jeet hai 26-5 ka score bahut acha score hota hai
0: right मेडल टेबल पे हो सकता है थोड़ी सी हलचल जरूर मचे लेकिन द लास्ट अपडेट दैट वी हैड वाज दैट इंडिया वाज स्टिल एट द सेवंथ पोजीशन लेकिन क्योंकि अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि रेसलिंग के अंदर भी हो सकता है मेडल्स आए तो मेडल टेबल में थोड़ी बहुत हलचल तो मचेगी हम आपको वो अपडेट अगले अपडेट में ला कर देंगे कि भारत की पोजिशन में क्या उत्थान हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं ऑन द मेडल टेबल फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक सेइंग गुड बाय विल बी ज्वाइनिंग बैक अगेन इन द नेक्स्ट अपडेट एट 11:30 AM
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप फिर से जुड़ चले हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने होस्ट हैं दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके, तो ये सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।
2: जी नमस्कार ज्योति जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
1: नमस्कार
2: जी, मैं मोहम्मद नासिर बरियाघाटा से।
1: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नासिर जी हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया, और सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सुनने वाले को और तमाम देशवासियों को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी शुभकामनाएं देता हूं।
1: जी जी श्रोताओं की से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया, आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर के आप आई हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुना रही हैं।
1: जी बहुत बहुत,
2: इतने खुशी के मौके हैं आज के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन में आज प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जो टॉपिक आपने लेकर के आया है वो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो दिखावे की दुनिया है वो सही मालूम में बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं और हकीकत में बहुत कम लोग जीते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी कहावत, एक पुरानी कहावत है कि जितनी चादर हो नहीं पैर फैलाना चाहिए, हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे। लेकिन आज हम करते क्या हैं कि हम सोसाइटी में दिखावे के लिए या फिर लोगों में अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए हम अपने से ज्यादा कुछ ओवर काम कर जाते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होता है। और चाहिए ये सोचनी चाहिए था कि ये सादगी होनी चाहिए थी, हमसे दूसरे को खुशी मिले, हम अपनी जात से किसी को फायदा दे सके, ये बेहतर होनी चाहिए। मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ज्योति जी आपको
1: जी।
2: के मेरे पास बाइक भी है और साइकिल भी पर 56 है, और आज भी मैं अपने घर से जब कभी मार्केट के लिए जाता हूँ या मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो मैं साइकिल का ही इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे कहते हैं कि भाई आपके पास में बाइक है, इतना सहूलत है, इसके बाद आप साइकिल चलाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके नजर में ये हेजिटेशन है कि शायद साइकिल चलाना हेजिटेशन उसे लगा, लेकिन इसका बेनिफिट मैं समझ पा रहा हूँ ज्योति जी कि आज मेरी उम्र 56 होने के बावजूद भी मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ,

0: नो डाउट मुझे कोई घुटने में तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, और मेरे हेयर भी बहुत ब्लैक है।
1: अच्छा।
0: शायद इसका रीजन ही यही है। बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं कि आप पैदल वॉक बहुत करते हैं और साइकिलिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, बाइक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस केस में करते हैं, ये ही शायद आज आपके अच्छी सेहत का राज है। और आज भी आप देखने में जवान लगते हैं, आपके एक भी हेयर सफेद नहीं हुए हैं और आपको कहीं भी घुटने में या जोरों में कहीं कोई पेन नहीं होता है। तो ये दिखाना नहीं चाहिए, लोगों को रियलिटी करनी चाहिए। और जहां तक हो सके, अगर मेरी औकात या मेरी कैपेसिटी 1 रुपए की है तो मैं 75% ही दिखावा करूँ। ये नहीं कि अगर 1 रुपए की है तो मैं 2 रुपए की दिखावा करूँ, ये नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जी।
1: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि किस प्रकार सादा जीवन उच्च विचार का होना बेहद जरूरी है, ना कि दिखावे का।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा जी।
1: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया शुक्रिया जी,
1: इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए
0: जी। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला 10:42:35 यानी कि गीतों और इस बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख किया जाता है।

0: तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।
1: जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार।
0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार।
1: जी मैं पारस पंडित चुचड़ा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद दीदी। सबसे पहले मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारे इस भारत को स्वाधीन बनाए, तो उन्हें शत शत नमन। और गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि जिन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार और अहिंसा के मार्ग पर चलने के सभी को प्रेरणा दी, और स्वच्छता की भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही है। और सबसे पहले तो मैं सादा जीवन उच्च विचार पर ही ध्यान देता हूँ। सादगी से रहना और मीठी बोली बोलना ये मेरा धर्म है, और ईर्ष्या से दूर रहे, अहिंसा से दूर रहे, और ऊंची पकवान फीकी मकान के कहावत में न जाए। अगर आपके पास जितना है उसी में खुशी से जिए तो आप अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। लोगों से प्यार से बोलिए, अपने परिवार के साथ रहिए, स्वच्छता बनाए रहिए, व्यायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और सादगी से जिए।
0: बिल्कुल,
1: बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। और सभी श्रोताओं को नमस्कार, और आपको भी नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।

0: भी धन्यवाद दीदी, आपका प्रोग्राम सुनते रहेंगे और आपसे बातें करके अच्छा लगा।
1: जी हमें भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद दीदी।

तो दोस्तों वक्त का पता ही नहीं चला और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब विदा लेने का समय आ गया है। जी हाँ, बापू ने सिखाया कि प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, लालच नहीं। और शास्त्री जी ने सिखाया कि पद और रुतबा कितना भी बड़ा हो, जमीन से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और आगे आज शुक्रवार और फिर शनिवार रविवार, यानी कि 3 दिन का लंबा वीकेंड। तो इस वीकेंड दिखावे की दौड़ या फिर सोशल मीडिया की फिल्टर के तनाव से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और उस सारे सुख को जी कर देखिए जो बिल्कुल मुफ्त मिलता है, यानी कि अपनों के साथ बैठकर हंसी मजाक, छत पर ठंडी हवा और चेहरे की सच्ची मुस्कान के साथ। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। तो दोस्तों अपना और अपने का ख्याल रखिए, सादगी से मुस्कुराइए और हाँ, सुनते रहिए अपना पसंदीदा ये सारे शोज। तो दोस्तों आप सभी के साथ मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैं बता दूँ साथ ही साथ कि ठीक 11:10 पे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी 100.1 FM गोल्ड पर। जी हाँ, फिलहाल दोस्तों अपनी दोस्त ज्योति को यहाँ से यानी कि रेनबो से थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए और जाते जाते आप सभी के लिए उदित नारायण की आवाज में एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए 107 FM रेनबो के साथ।

0: हमारी महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने आज हमें स्वर्ण पदक दिलवाया है। तो चलिए आइए सुनते हैं कि कुमकुम मोहत ने आज क्या कहा।
1: उसमें उम्मीद मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मेडल तो आएगा, 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
2: बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है कि इस स्पर्धा में, रिकर्व की स्पर्धा में आज तीन मुकाबले हैं साक्षी, और तीनों में पदक हैं। एक स्वर्ण आ चुका, एक रजत आ गया, और एक स्वर्ण ही आना चाहिए। और भी एक और पदक जिसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था अपने पिछली अपडेट में, सेलिंग में डिंगी में ILCA 7 क्लास जो होती है उसकी डिंगी, उसमें नेत्रा कुमानन ने फाइनल रेस एक और जो दो आज थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल थाईलैंड के सोफिया मॉन्टगोमरी को मिला और सिल्वर पदक जो है वो सिंगापुर के पास गया। उनका जो समापन था वो 14 अंक कुल थे, नेट भी 14 अंक थे, हांगकांग की स्टेफनी नॉटन के भी 14 ही अंक थे, लेकिन किस्मत वाली रही यहाँ पर नेत्रा, इसलिए क्योंकि रिकैलकुलेशन जब होता है अगर बराबरी होने पर उसमें उनको एक पेनल्टी कम मिली थी और ज़्यादा थी स्टेफनी की, तो यानी ये कांस्य पदक भारत के पास और आया।
0: जी, रेसलिंग की दुनिया से भी आज बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहली अच्छी खबर जो हमने आपको दी थी दिन में थोड़ी देर पहले, वो ये है कि इंडिया की लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाओ जी इन द वुमेन 75 किलोग्राम कैटेगरी एट द एशियन बाउट। लवलीना मेंटेन्ड हर कंपोज्ड अप्रोच थ्रू आउट द बाउट, अलाउइंग बाओ टू कम फॉरवर्ड व्हाइल रिस्पोंडिंग विद इफेक्टिव काउंटर पंचेस। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट टू राउंड्स, द इंडियन बॉक्सर कंट्रोल्ड द थर्ड राउंड एज वेल टू कंप्लीट अ डोमिनेंट विक्ट्री बाय गोइंग अहेड and winning the bout by a unanimous 5-0 decision. आज उनका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो लवलीना बोरगोहेन को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ साथ it couldn't have become a better day for her because the birthday just became even sweeter and perfect for Lovlina Borgohain, who scripted history by becoming the only second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. The 29-year-old Indian defeated China Ziyoba 5-0 in a closely fought contest.
2: बिल्कुल, और ये जो लवलीना है इसकी जितनी तारीफ करें सुनहरा उपहार उन्हें आज मिला है। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जिस तरह से उन्होंने खेला था, जिस तरह से बॉक्सिंग की थी, लगातार कॉम्बिनेशन पंचेस लगाए थे, वो तो देखने ही वाले थे। हम बात सेलिंग की कर रहे थे, सेलिंग में और लोग भी हैं, विष्णु सर्वनन इस समय मैंडिंगी उसमें कांस्य पदक से चूक गए, वो चौथे स्थान पर आए हैं। और जो विंड सर्फिंग है आज, वैसे पूरे जापान में हवाएं बहुत चल रही, खासतौर से जहाँ जहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, आर्चरी में हवाओं का बहुत कहर रहा है। विंड सर्फिंग में काव्या कोयलो सातवें स्थान पर हैं ओपनिंग सीरीज में, सीरीज दसवीं की रेस के बाद, और मिक्स्ड सर्फिंग में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार वो पांचवें स्थान पर बने हैं। गोल्फ में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही है क्योंकि महिलाओं के स्ट्रोक प्ले में प्रवणी उर्स जो हैं वो पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, और दीक्षा डागर और अदिति अशोक के साथ जो भारतीय टीम है वो दूसरे स्थान पर इस समय चल रही है। बस ये बढ़त बनाए रखें। और पुरुषों की बात करें तो वीर अलावत 10वें स्थान पर हैं, सप्तक तलवार 11वें, और पुरुषों की जो टीम है उसमें भारत जो है इस समय छठे स्थान पर चल रहा है। तो गोल्फ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी, एंड अ वेरी क्विक अपडेट विच वी लेफ्ट यू इन द लास्ट अपडेट आपके साथ जो हमने छोड़ा था पिछले अपडेट में, कि भारत के सुजीत कलकल पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग अपसेट डिफीटिंग रेनिंग ओलंपिक चैंपियन एंड होम फेवरेट कोटारो क्यू का इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल, और इसके साथ अब वो गोल्ड मेडल के लिए 65 किलोग्राम फाइनल कैटेगरी में कम्पीट करेंगे आज दोपहर 3:45 टू बी मोर स्पेसिफिक 2:46 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द न्यूज हैज बिकम ऑफिशियल। सुजीत 1-3-3 ऑन criteria scoring the decisive final point after trailing 0-2 in the opening period. The Indian wrestler fought back brilliantly in the second period, scoring 3 points to seal a memorable victory. Here's rooting for Sujit.
2: और उनका final जो होना है वो तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीव के साथ होना है, तो उम्मीद करें एक स्वर्ण पदक और भारत की राह देख रहा है।
0: Right, and a quick update also from wrestling to just finish this off. India's Dipanshi has kept her medal hopes alive after dominating Cambodia's Deep Samlang in the women's 50 kilogram repechage. She secured a 10-0 victory by technical superiority to book a place in the bronze medal bout. और अब आपको भारत की दीपांशी भी आज दोपहर 3:58 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेलते हुए अपने बाउट में नजर आएंगी, hopefully also getting us a podium finish in that. That is all that we had in this update. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है अनुपम पाठक। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, दोबारा एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Hello and a very warm welcome to all our lovely listeners who are tuning in right now at 12:30 PM on Akashvani. हम लेकर आगे आपके लिए ongoing Asian Games 2026 के live updates. मैं हूँ साक्षी मांडवाल. मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक. तो सबसे पहले the big news of the day coming from the world of archery. आज हमारे archers ने भारत का दिल खुश कर दिया. जी हाँ, हमें देखा कि men's recurve team final में भारत ने silver medal अपने नाम कर लिया. जी हाँ, India won the silver in the men's recurve team event after South Korea clinched the gold medal with a 2-0 set win in the final phase, completing a 5-1 victory overall. India started the third set strongly with Neeraj Chauhan hitting a 10, followed by 9s from Yashdeep Bogi and Dheeraj Bommadevara. However, Neeraj 7 in the second rotation hurt India's chances as they finished the set on 54. South Korea needed 27 from their final 3 arrows to win the gold. Lee Woo-yeok hit a 10, Kim Jae-deok a 9, and Kim Woo-jin sealed the title with a 9 as the Koreans secured back-to-back Asian gold medals in the event. Anupam.
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर. कुल मिलाकर हम इसको ज़रूर कहेंगे क्योंकि आर्चरी में अगर हम पिछले प्रदर्शनों को देखते हैं तो इस बार बहुत पिछले इसके पहले रिकर्व में कुल मिलाकर एशियन गेम्स में 3 पदक आए थे. इस बार आज एक दिन में 3 पदक आए हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर. हालांकि ये जो पहला सेट था उसकी शुरुआत बहुत अच्छी भारत ने की थी, दोनों बराबर बराबर थे और एकदम आखिरी एरो पर जाकर ये स्थिति आई थी कि मामला बराबरी पर हुआ वरना भारत जीतता. उसको अंक बराबर रहे. दूसरे सेट में यशदीप ने एक एरो गड़बड़ किया और जैसा आपने बताया आखिरी सेट में नीरज का वो तीर ऐसा भटका. लेकिन आज के लिए ये बात जरूर कही जाएगी, जब हवा थोड़ी सी आज तेज चल रही थी लगातार, तो हवा के साथ अमूमन लोगों की शिकायत आर्चर्स की रहती है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है. लेकिन प्रदर्शन और अंतिम निर्णय जो आता है वही आपको पदक तालिका पर ले जाता है, पोडियम पर ले जाता है. लेकिन फिर भी रजत बहुत स्वागत योग्य बात है. और इसके अलावा हम बात करें, अभी दो जगह दो बॉक्सर्स हमारे उतरने हैं, दो जगह स्वर्ण पदक की उम्मीद है. उसके अलावा अभी कुश्ती में फाइनल खेलना है नीरज को और कांस्य

0: पदक की भी उम्मीद है दीपांशी से। मैं आपको ताजा जानकारी बता दूं, इस समय केनो में कयाक क्रॉस में शिखा चौहान नवे स्थान पर रहकर क्वालिफाई की थी, हमने बताया था। क्वार्टर फाइनल में वो तीसरे स्थान पर आई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। प्रद्युम्न सिंह राठौर ने क्वालिफाई किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल इस बीच हो चुका है, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और चौथे स्थान पर रहे, जबकि टॉप पहले जो दो स्थान पर आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं।
1: जी, और डेंगू की दुनिया से भी आपको कुछ लेटेस्ट खबर दे दे कि आज इंडियाज नेत्रा कुमानन सेक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डेंगू सेलिंग इवेंट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक इन द फाइनल रेसेस। आफ्टर अ डिफिकल्ट ओपनिंग रेस नेत्रा बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली टू विन द सेकंड फाइनल रेस। शी फिनिश्ड लेवल ऑन पॉइंट्स विद हांगकांग स्टेफनी लुईस नॉर्टन, बट नेत्रा सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉर्टन सॉ हर क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। एंड जस्ट वन क्विक गुड न्यूज दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर एंड हैड शेयर्ड लास्ट अपडेट की बॉक्सिंग की दुनिया से आज हमें गोल्ड मेडल आ गया। जी हाँ, द बर्थडे गर्ल इंडियाज लवली नबोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम गोल्ड मेडल बाउट एट द एशियन गेम्स एंड देयरबाय शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली सेकंड इंडियन वुमन बॉक्सर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आफ्टर द लेजेंडरी एमसी मैरीकॉम। व्हाट अ फीट, व्हाट एन अचीवमेंट अनुपम।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात। और जो आपने बात की साक्षी नेत्रा कुमारन की, सेलिंग में भारत गाहे बगाहे पदक लाता रहा है। नेत्रा कुमारन तमिलनाडु से आती हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं, 15 बरस की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी। और मजे की बात क्या ना, जो बड़े लोगों के साथ होता है, कई खेल खेलती थी, टेनिस खेलती थी, स्केटिंग खेलती थी और भरतनाट्यम की डांसर हैं। इसके बाद जब उनके ने फाइनल कर लिया कि नहीं मुझे अब सेलिंग ही करनी है, तो स्पेन में ट्रेनिंग की है, ओलंपिक में खेल चुकी हैं भारत की ओर से, तो यकीनन उनका ये जो कांस्य पदक है बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे चमकते दमकते रंग का पदक है।
1: Indeed, and Sepetakro की दुनिया से भी आपको quick update दे दे कि Group A के match of the Sepetakro Women's Quadrant, Thailand absolutely decimated and finished India. They took the second set by a margin of 15-4 as they won the match in straight sets. First, initially we also saw that Indians were drowned 13-15 by Thailand in the first set as they lost it earlier. India thus have bowed out of the event after losing all of their group games. तो Sepetakro के अंदर भारत का सफर यहाँ पर आकर समाप्त हो गया।
0: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा क्षण है, अविस्मरणीय है। जो लोग भी इसको वहां पर उपस्थित हैं, इनको जानकारी मिल रही, लवलीना बोरगोहेन के गले में स्वर्ण पदक इस समय डाला जा रहा है, पदक सेरेमनी जो होती है वो हो रही है, भारत का राष्ट्रगान की जो धुन है बस वो गूंजने वाली है। आपने देश का नाम रोशन किया है लवलीना, और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। साइकिलिंग का ताजा जो समाचार है वो ये है, डेविड बेकहम जो रिपेचेस में होकर पहुंच गए थे, क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने मेंस पुरुषों की कायरिन स्पर्धा में साइकिलिंग में, वो पांचवें स्थान पर आए हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, और इस समय पुरुषों की मेडिसिन प्रतियोगिता जो है स्पर्धा वो चल रही है।
1: जी, अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज ऑन द टेलीविजन एज वी विटनेस द हिस्टोरिक गोल बाय लवलीना बोरगोहेन, जस्ट वेटिंग मोमेंट्स अवे फ्रॉम द नेशनल एंथम अपराइट आवर लव।
0: साक्षी, जन्मदिन पे इससे बेहतर तोहफा चाहोगी क्या?
1: बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है अनुपम, कि आपको आपके जन्मदिन पर मौका मिले कि आप अपने देश को और अपने देशवासियों को, अपने परिवार के जनों को गौरवान्वित महसूस करवा सके थ्रू योर अकम्पलिशमेंट्स। व्हाट बेटर देन दैट। ऑन दैट नोट, इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक फॉर नाउ सेइंग गुड बाय। विल बी जॉइनिंग यू राइट बैक एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026।
0: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
4: এতক্ষণ শুনছিলাম 20তম এশিয়ান গেমস 2026 এর আপডেট, আর আবার ফিরে এলাম গান্দরিয়া নিয়ে শাশ্বতী সুদীপ্ত। আমরা আজ কথা বলছি কাজী নজরুল ইসলামের গান শুনছি, আর যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি মহাত্মা গান্ধী এবং কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁদের যে ভাবধারার মিল, তাদের যে মানসিকতার মিল,
5: হয়তো তাদের যে সম্প্রীতি,
4: একেবারেই সম্প্রীতির কথা। সুদীপ্ত, আমরা তো ধরো এখন আর মাত্র আধ ঘন্টা আমাদের হাতে রয়েছে,
5: আর আধ ঘন্টাও হাতে নেই,
4: আর আধ ঘন্টাও নেই।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत और प्यार भरे नमस्कार के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है परियोजना प्रस्तुति। और हर रोज हम लेकर आते हैं परियोजना प्रस्तुति में कोई ना कोई एक योजना पर ढेर सारी बातें आप तक हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और आज भी उस सिलसिला को जारी रखेंगे। आज जिस योजना के बारे में मैं ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी वो है स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है जिसे 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की

0: जयंती को शुरू किया गया था। इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच से मुक्ति जो है मुक्त बनाना, यानी कि खुले में कोई भी शौच ना करे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना। कचरा प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। ठोस और तरल, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन और निपटान करना भी इसका एक उद्देश्य है। जागृति लाना, लोगों में साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता पैदा करना तथा नागरिकों को सामूहिक रूप से जोड़ना। पहले चरण की बात करूं तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी जयंती की 150वीं जयंती पर जो है ये वहीं तक था। और दूसरा चरण भी शुरुआत हुई, इसकी दूसरे चरण की शुरुआत हुई 2020 में। इसका फोकस ODF स्थिति को बनाए रखना और गांवों और शहरों को ODF प्लस तथा कचरा मुक्त बनाने की ओर अग्रसर करना। इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ सफाई और स्वच्छता के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा जैसे विशेष वार्षिक अभियानों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी को लगातार बढ़ावा दिया जाता है। और अंत में यही कहूंगी कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आज परियोजना प्रस्तुति में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा की, और क्या है कि स्वच्छता जो है उस पर तवज्जो देना हर एक नागरिक की उसकी अपनी एक ड्यूटी है, और अगर हम इस ड्यूटी को सही से निभाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, चारों ओर आपको स्वच्छता नजर आएगी और फिर क्या होगा, हम सब के सब बहुत स्वस्थ रहेंगे।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का स्वागत करेंगे। क्या है कि पहली बार जब स्वागत किया था तो वो परियोजना प्रस्तुति के लिए स्वागत किया था, दूसरी बार जो आपका स्वागत कर रही हूँ तहे दिल से आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। ऐसा है कि जानते ही आप, बोलने की जरूरत नहीं है कि आप बेसब्री से इंतजार करते हैं दोपहर 3 बजे उस कार्यक्रम को सुनने के लिए जिसका नाम है तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का। यानी कि सुलक्षणा अपने अंदाज में जो कहती है ना कि तीन का तड़का यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम, तो लेकर हाजिर हूं मैं और आप सभी का फुल टू इंटरटेनमेंट होगा। लेकिन आज के दिन को ध्यान में भी तो रखना पड़ेगा क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। अब आप पूछेंगे कि खास क्यों है, जाहिर सी बात है जानते भी रहते हैं ना, तो फिर भी पूछते हैं आप कि आज का दिन क्यों खास है, क्योंकि आपको सुनना रहता है ना मुझसे कई सारी बातें। तो चलिए बताती हूँ कि आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, और उनके योगदान के बारे में क्या ही कहना। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनके जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की तो क्या मतलब, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, ये दोनों पेट्रियोटिक लीडर्स का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। नारा इनका था देश को जय जवान जय किसान का, प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था। सादगी ईमानदारी और अदम्य साहस के प्रतीक थे। वैसे मैं बता दूं कि आज

इस गीत को आपने सुना लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से, और आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणव विश्वास की। और अगला गाना जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी म्यूजिकली योर्स के जरिए इन द प्रोग्राम 3 का तड़का हैशटैग दिल धड़का में, वो है स्पाई थ्रिलर और अंडरकवर एजेंट्स वाली फिल्में जो बनी थी, खुफिया देशभक्ति फिल्में। और राजी फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में, उसमें आलिया भट्ट ने एक कश्मीरी लड़की का किरदार निभाया था। 1971 वॉर के वक्त स्पाई बनकर पाकिस्तान जाती है। और अगला गाना फिल्म राजी से, जैसा कि मैंने बताया पहले, सुनिधि चौहान की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। गुलजार ने इसे कलमबद्ध किया है, शंकर ईशान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आपको बता दूं दोस्तों कि इस गीत को एक गीतकार नहीं बल्कि दो गीतकार मिलकर लिखे थे, गुलजार और अल्लामा इकबाल। और अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर, और अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहूंगी फिल्म केसरी से। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2019। अक्षय कुमार की ये फिल्म 1897 के बैटल ऑफ सरागरही पर आधारित है, जहां 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानियों का सामना किया था। बीपरा की आवाज में इस गीत को आप सुनेंगे। कलमबद्ध किया है मनोज मुंतशिर ने और संगीतबद्ध किया है और कोने।

अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहूंगी फिल्म उरी से। आपको बता दूं कि रियल वॉर और सर्जिकल स्ट्राइक्स पर आधारित कई बॉलीवुड फिल्में बनी है, जिसमें से कि एक उरी है। द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में रिलीज हुई थी, 2017 में द गाजी अटैक रिलीज हुई थी, जो कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान समुन्दर के अंदर हुई सबमरीन की लड़ाई पर आधारित बेहतरीन फिल्म थी। उसके बाद 2021 में आई थी फिल्म शेरशाह। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसमें कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था। और उरी की बात करूं तो विकी कौशल ने ये फिल्म 2016 में हुई रियल सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी और इसमें देश भर में जोश भर दिया था। इसी फिल्म से अगला गाना।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:25 और आपको बता दूं दोस्तों कि 3:30 से आप सुनेंगे NCERT स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। और अब चलते चलते आप सभी से आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आज्ञा चाहेगी, लेकिन इस वादे के साथ जा रही हूं कि 7:02 पर वापस आऊंगी। जी हां, वापस आऊंगी लेकर कार्यक्रम छायालोक। और फिलहाल चलते चलते आप सभी के लिए बॉर्डर टू फिल्म से सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौर की आवाज में ये बेहतरीन गीत। जावेद अख्तर ने इसे कलमबद्ध किया है, अनु मल्लिक का संगीत है। इसे सुनते सुनते आज्ञा दीजिए सुलक्षणा पर्वत को और 3:30 से सुनिए NCERT का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: संग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था। वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत

0: मंत्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
1: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें,
0: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे,
1: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रतापूर्वक साफ इनकार कर दिया। उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
0: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था। वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
1: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था। वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
0: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए।
0: जी,
1: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।

0: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ, और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
1: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

0: यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: गांधी। नमस्ते
4: नमस्ते।
2: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
5: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
5: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस

0: जिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
1: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
2: जी बापू।
1: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
2: हम ध्यान रखेंगे।
1: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए।
2: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
1: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
1: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। हाँ बिल्कुल सर।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं,
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना।
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।

0: अरे वो
1: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
0: अरे
1: मैं ये बात पापू को जरूर बताऊंगी।
0: अरे मेरे
1: पापू।
0: नहीं बेटा मेरी बात
1: नहीं,
0: तो सुन।
1: नहीं पापू।
0: नहीं अरे सुन तो पापू से मत बोल। अरे
1: मेरी बात
0: सुन। नहीं नहीं अरे
1: पापू।
0: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
2: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
1: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
1: ठीक है बापू।
2: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी।
0: बापू बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
0: जी बापू मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
4: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए, अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो।
3: मैं टमाटर,
2: हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
4: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
4: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
4: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए, हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
4: ठीक है चंपा, ठीक।
5: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर
4: काट। मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
4: नमस्कार बापू।
5: प्रणाम बापू।
6: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
4: बाबू जी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
6: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
6: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
6: अच्छा जाओ।
2: जी।
6: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
4: जी, जी।
2: चलो चलते हैं।
4: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
5: बापू बापू ये देखिए।
6: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
5: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं, दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
6: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
5: जी।
6: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
5: हाँ।
6: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। उन्होंने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
5: जी बापू।
6: हाँ, समझ गई ना?
5: जी।
6: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
5: जी बापू, धन्यवाद।
0: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
7: अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हाँ?
7: अभी तो इसे और चमकाना है।
3: ओ
7: देखो इसे और चमकाता हूँ। ये लो, अब देखो अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
3: चमकने भी लगा।
7: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
3: हाँ जी बापूजी।
7: हाँ शाबाश।
0: तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं, और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अनुपम पाठक. हम लेकर आ गए आपके लिए ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन की कि कैसा रहा अभी तक का सफर. तो आपको बता दें कि वॉलीबॉल के अंदर भारत ने साउथ कोरिया को 3-1 से इन द मेंस वॉलीबॉल 5th to 8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच में हराकर जीत दर्ज कर ली. इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23. इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23.
1: और अब पांचवें छठे स्थान के लिए भारत को मुकाबला करना होगा. लेकिन इस समय सारी निगाहें जो भी खेल प्रेमी हैं उनकी इस बात पे जमी है कि क्या होगा जब हॉकी का मैच शुरू होगा और जब खत्म होगा तो स्कोर लाइन क्या होगी. हर एक के मन में दिल में तमन्ना यही है कि भारत की लड़कियां एक स्वर्ण पदक और लेकर आएं. और आज के दिन की जैसे शुरुआत हुई थी स्वर्ण पदकों की झड़ी के साथ, एक के बाद एक के बाद एक स्वर्ण पदक आए हैं, तो भारत की लड़कियां हॉकी में भी स्वर्ण पदक लेकर आएं. शुरुआत हो गई है, अभी अभी बस सीटी बजी है, लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है और एक मिनट हुआ है. जाहिर सी बात है स्कोर 0-0 है. अभी तक कोई भी मूव नहीं बना है इस समय तक किसी भी टीम की ओर से.
0: राइट, होपिंग दैट इंडिया पुट अप अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट चाइना बिकॉज चाइना विल नॉट प्रूव टू बी एन ईजी कॉम्पिटिटर टूडे स्पेशली इन द फाइनल. बट क्योंकि आज अनुपम ने बताया कि किस तरह से दिन की शुरुआत रही, मेडल्स की बौछार होती रही है आर्चरी में. आज हमने देखा शुरुआत हुई दिन से जहाँ वुमेन्स रिकर्व टीम हमारे लिए गोल्ड लेकर आई और उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेन्स रिकर्व टीम फाइनल्स के अंदर भी हमें सिल्वर मेडल आज मिला. वहीं अभी रिसेंट concluded wrestling bouts mein Sujit Kalkar was up against Abdul Majid Kudiv who is from Tajikistan in the men's freestyle 65 kg final where Sujit Kalkar bought India the gold medal by defeating his Tajikistan opponent 10-9 making a very strong comeback being 9-2 down. Ji haan, 9-2 se peeche the aur wahan se comeback karke finally he was able to defeat his Tajik opponent 10-9. What better than that? And also let's tell you all that Abhi Dipanshi also has kept the medal hopes for India up and alive because she had been dominating Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kg repercharge. She secured a 10-0 victory by technical superiority earlier in the day to book a place in the bronze medal bout. Aur unka bhi ab bout aane wala hai thodi hi der mein dosto at 3:58 PM Indian Standard Time. So here's hoping and keeping the fingers crossed Anupam that Dipanshi should be getting us a bronze medal tonight.
1: Bilkul aa sakta hai aur aaj wo lucky bhi rahi hain is mamle mein ki Japan ki Susaki Mui se unka मुकाबला हुआ था. पहले ही जो उनकी बाउट थी वही हार गई थी आज वो. लेकिन 50 किलो के इसमें दीपांशी को अगर आपने देखा है क्या लगता है, इतनी छोटी सी बच्ची 16 साल की लड़की और वो कमाल करके दिखा रही है. इस समय देश की सबसे उभरती खेल प्रतिभाओं में अगर आप गिनती पे गिनिए नाम, उंगलियों पर गिनने की कोशिश करिए तो उसमें दीपांशी का नाम आता है. तो जो जापान की पहलवान थी वो पहुंच गई फाइनल तक. तो फिर मौका मिला रिपेचैज में दीपांशी को जहां उसने कोई चूक नहीं की और ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसका मुकाबला होना है. लगता है मुझे इस हॉकी का मैच जब तक ख़त्म होने वाला होगा तब तक शायद वो बाउट भी हो जाए. और आपने सुजीत की बात की थी, सुजीत कलकल की बात तो हम बार बार बार बार करना चाहेंगे. आज सबको लगने लगा था, हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये बाउट तो सुजीत के हाथ से गई. 0-2 से पीछे था, इसके पहले 8 अंक हो चुके थे और उसको क्या करेगा. लेकिन एक ही आदमी था जिसको भरोसा था, नहीं अभी मैं वापसी कर सकता हूं. एक भी अंक और गंवाते तो फिर मामला पलट जाता, लेकिन उन्होंने वो एक अंक आने ही नहीं दिया और एक के बाद एक वो दांव चले, वो मूव किए पैर के ऊपर. खास तौर से उनके जो 3 आक्रमण उन्होंने किए थे जिसपे 2-2-2, 6 अंक उन्होंने कमाए, कुल मिला के एक साथ उन्होंने 8 अंक एक के बाद एक कमाए. और जब मुकाबला समाप्त हुआ उस समय उनका हाथ ऊपर किया गया, स्वर्ण पदक. गजब बाउट, गजब कुश्ती. हमें याद आ रही थी ये बजरंग पुनिया, ये भी इसी 65 किलोग्राम भार वर्ग में होते थे, उसके पहले

0: वो आगे ना बढ़ने से और मजे की बात कह रही है, आज लगता है जो किस्मत की देवी होती है वो भी मेहरबान है, लेकिन वो मेहरबान उन पर होती है जो मेहनत करते हैं और भारतीय टीम पूरी मशक्कत के साथ इस मैच में बने रहने का प्रयास कर रही है। हुआ यह है कि पहले क्वार्टर में ही बहुत शानदार मौका मिल गया भारत को और भारत ने कोई चूक नहीं की और लाल रंग सियामी ने अब जो अपना 200वां मैच खेल रही हैं आज, उन्होंने एक रिकर्व पास पर क्या जबरदस्त शॉट लगाया जो किसी भी गोलकीपर को रोकना बहुत मुश्किल होता और भारत 1-0 से आगे हो गया। उसके बाद से भारत डिफेंस में ज्यादा है, उतने मूव नहीं बना रहा है, चीन पूरी कोशिश कर रहा है। 5 पेनल्टी कॉर्नर चीन को मिल चुके हैं, भारत के हिस्से में सिर्फ एक आया है और आप विश्वास करेंगे दूसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला चीन को और उसको सविता पूनिया ने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अकल्पनीय सा सेव करके दिखाया, जैसे उनको पता था कि ये शॉट कहाँ आने वाला है और किस जगह आएगा। अपने ग्लव्स में गेंद को रोका और चीन को बराबरी करने से रोक दिया। उसके बाद से चीन लगातार हमले कर रहा है लेकिन भारत अपनी इस लीड को बरकरार रखे हुए है। पोजिशन चीन के पास ज्यादा है लेकिन स्कोर लाइन भारत के पक्ष में। अब हाफ टाइम हो चुका है और दूसरे हिस्से में यानी जो तीसरा क्वार्टर होता है उसका भी आधा वक्त हो चुका है। लीड अभी भी 1-0 चीन।
1: Yeah, hoping that the stars align today for the Indian hockey women's team and that we are able to get the gold in this. All eyes are right now on the screen and hopefully in the next maximum 30 minutes, 20 to 25 minutes, we'll get to have the result. लेकिन आपको ये बता दें क्योंकि आज के दिन का ये गोल्ड का मुकाबला है तो आज काफी सारे पदक भी भारतीयों के नाम लगे हैं अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में। आर्चरी के अंदर हमने देखा कि कैसे वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम आज गोल्ड मेडल लेकर आई, हमारे लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो भारत इस तरह के इवेंट के फाइनल्स में भी पहुंचा। मैं बात कर रही हूं वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। वहीं रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेंस रिकर्व टीम फाइनल के अंदर आज भारत को 2 सिल्वर भी मिले एंड द अमेजिंग थिंग हैज बीन कि डिंजी के इवेंट में भी यानी सेलिंग के इवेंट में भी भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया नेत्रा कुमानन ने। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैड अदर इवेंट्स इन विच द मेडल्स केप्ट ऑन पोरिंग इन। इन बॉक्सिंग वी हैड इंडियाज लवलीना बोरगोहेन हु गॉट the gold for India in the 75 kilogram category defeating China's Bao Zi and then uske baad humne dekha Parveen Hooda bhi hamare liye aaj gold lekar aayi in by a split decision of 3-2 that went in favor of the Indian and finally we had Ankush Pangal who was up against Kim Min Seong in the men's 80 kilogram final aur uske andar bhi aaj Bharat ko gold medal mila. To overall Anupam एक अभी मैंने छोड़ दिया इवेंट रेसलिंग का आपके लिए लेकिन दिन बहुत खूबसूरत रहा है।
0: बहुत खूबसूरत दिन आज पदकों के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया दिन रहा है और ये जो स्वर्ण पदक है ये सुजीत कलकल ने दिलाया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में और क्या जबरदस्त उन्होंने मैच खेले, एक के बाद एक 4 बाउट जीते, फाइनल में पहुंचे और उसके पहले सेमीफाइनल में उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया। शायद उनकी वो कसक दूर हो गई होगी जिसमें वो ओलंपिक क्वालिफाई करने में बस किस्मत की वजह से चूक गए थे। एक बार तो हवाई जहाज ने डिले कर दिया, वो क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लेने ही नहीं जा पाए थे तो शायद वो कसक खत्म हो गई होगी और उसके बाद स्वर्ण पदक जीत कर तो हो ही गई क्योंकि क्या जबरदस्त उन्होंने फाइनल खेला तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद दीप के विरुद्ध। एकदम पीछे थे, किसी को शायद उम्मीद न रही हो कि अब जीत सकते हैं। 7 अंकों का अंतर आ गया था, एक अंक और चाहिए था विपक्षी को, वहां से वापसी की और एक के बाद एक अंक बनाते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में किया।
1: जी एंड वेरी क्विकली टू सम इट अप, अभी भी थर्ड क्वार्टर समाप्त होने में दोस्तों अमूमन 4:30 ही बचे हैं और अगर ये क्वार्टर भी गोललेस जाता है तो भारत अपनी एक गोल की लीड बरकरार रखेगा चाइना के ऊपर। चाइना को अभी भी एक गोल करना होगा हॉकी के इस फाइनल मैच में जो गोल्ड मेडल का मैच हो रहा है भारतीय महिलाओं का हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। तो आखिरी क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि चाइना हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव आए बिकॉज दे वुड देन वांट टू एटलीस्ट टाई द स्कोर सो दैट इट कैन गो इनटू शूट आउट, लेकिन वो तो समय ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आज भारत ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहता है तो पहले तो 1982 के बाद अब ये पहली बार होगा जब भारत फिर से एक गोल्ड मेडल लेकर आएगा हॉकी में और उसके साथ साथ भारत फिर मेडल टेबल में भी दोस्तों 16 गोल्ड मेडल्स की बदौलत हो सकता है कि उज़्बेकिस्तान के साथ स्वॉपिंग कर पाए। अभी भी उज्बेकिस्तान के पास 17 गोल्ड मेडल बने हुए, भारत के 15 है। भारत को 2 गोल्ड मेडल दौड़ जीतने, उज्बेकिस्तान के साथ बराबरी करने में, और उसके बाद विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस। बट एटलीस्ट दिस गोल्ड विल डेफिनेटली हेल्प इंडियाज होप्स ऑफ गोइंग अप ऑन द मेडल टैली इंक्रीज। उसके साथ अभी फिलहाल वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ अनुपम पाठक। हम आपसे दोबारा एक बार जुड़ेंगे शाम को 6:30 बजे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स
4: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे शारदी।
5: তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে।

ने पिछली अपडेट खत्म की थी उसी समय शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की भारत स्वर्ण पदक की तलाश में जो उसने आखिरी बार 1982 में जीता था वहीं चीन है डिफेंडिंग चैंपियन भारत पूरी ताकत लगा दे रहा है कि चीन

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। अभी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है हॉकी का मैच, ऐसा जबरदस्त, यादगार, कभी भी ना भूल पाने वाला मैच। भारतीय महिलाओं ने 1-0 से डिफेंडिंग चैंपियन चीन को परास्त किया, लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया, और साक्षी बेकरार है बताने के लिए।
2: ऑफ कोर्स इट्स बीन अ थ्रिलर नेल बाइटिंग एंड टू द मैच शुड आई से, बिकॉज इंडिया got the goal very early on in the first quarter itself, but after that the Indian defense stepped up and a beautiful penalty stroke defense that Sabata Punia did for us early part of the game definitely went long way in helping solidify India's chances.

0: towards making sure that the defense was all round surrounded the Chinese and never let the China make an entry into the game. China got several penalty corners also, but they could not even convert one penalty corner in their favor. 5 penalty corners unko mile first half ke andar hi, aur fir bhi usko bhi wo convert nahi kar paya. Humne dekha ki by the end, jo kehte hai na, last quarter mein China itna zyada desperate ho gaya tha ki they put everything into the attack. Unhone apne goalkeeper ko bhi bahar karwa diya and unki jagah ek player le aaye just to go all in, lekin fir bhi wo wahan par goal score nahi kar paye to level the score. As a result, the 44-year-old Wade, jiha 1982 mein Bharat ko pichli baar ya aakhri baar gold mila tha, aur aaj Bharatiya mahilaon ne ye drought khatam kar diya dosto. They have broken this drought after 44 years to help India get that coveted gold medal in the Asian Games. And as Anupam just mentioned, this also cuts our ticket to the 2028 Olympics and the big one that comes as for us. A lot of changes, positive changes that we see now in this team. आप ये देखिए, चाइना के पास बॉल पोजीशन भी भारत से ज्यादा ही रहा. 52% तक चाइना के पास बॉल पोजीशन रहा, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए. समा हमने आज देखा और एक चीज सामने जो आई अनुपम, वो ये थी कि चाइना का हमेशा से ही डिफेंस स्ट्रांग रहा है, अटैक उनका स्ट्रांग पॉइंट रहा नहीं है. लेकिन आज वो पहले से ही पहले क्वार्टर में ही बैकफुट पे आ गए थे बिकॉज भारत ने गोल दाग दिया था. तो आज उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि अटैक करना ही करना था. और समाओ इंडिया ने उसके बाद अपने डिफेंस को इतना प्यारा रखा कि चाइना को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो एक एक की बराबरी भी कर.
1: दरअसल पूरा मैच अगर आप देखिए तो आज भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ही अलग. चीन को चौंकाने वाली रणनीति उन्होंने बनाई और किस्मत ने साथ ये दिया कि अर्ली गोल आ गया बहुत पहले ही. और क्या जबरदस्त गोल था, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल. लाल रंग सियामी ने किया था, अपना 200वां मैच खेल रही थी आज, और रिवर्स शॉट लिया था उन्होंने डी के भीतर और उछलता हुआ शॉट, ऐसा शॉट जिसपे शायद बड़े से बड़ा गोलकीपर भी उसको शायद ही रोक पाए. वो जो बढ़त मिली उसके बाद से भारतीय टीम ने अपना गियर ही चेंज कर दिया. चाइना का डिफेंस बहुत अच्छा है, उनका गोलकीपर दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर्स में है. भारत ने कहा अब हमने ये लीड ले ली, अब हम भले आप हाफ में खेलते रहें या हम पर अटैक करें, हम अपने डिफेंस को एकदम मजबूत कर लेंगे और आपको गोल नहीं करने देंगे. और एक शानदार क्षण और था जब सविता पूनिया ने पहले क्वार्टर में बिच्छू थी गोलकीपर, दूसरे क्वार्टर में गोलकीपर बदला गया, सविता पूनिया को लाया गया और पेनल्टी स्ट्रोक मिला. देखिए पेनल्टी स्ट्रोक में हॉकी में उसको रोक लेना, और ऐसा रोकना कि अंधा चुक्की नहीं है, वो साफ पता है जैसे उसको कि ये शॉट यहीं आने वाला है, लेफ्ट साइड में मेरे आने वाला है, किनारे आने वाला है, इतना किस तेजी के साथ आने वाला है, गजब का डिफेंस. तो शायद भारतीय टीम उसके बाद बहुत जोश में आ गई. और चीन का एंड में आपने बताया इन्होंने अटैक बहुत किया. मुश्किल होता है इस रणनीति पे खेलना कि हम सिर्फ डिफेंड करेंगे. एक बार लीड ले लिए, एक गोल की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती, लेकिन हम लीड आ गई है, हम इसी को डिफेंड करेंगे और थोड़ा मोड़ा नहीं, हम 40 मिनट तक डिफेंड करेंगे. Yes. कमाल करके दिखाया आज.
0: ऑफ कोर्स इंडिया हैड देयर प्रायोरिटी स्ट्रेट टुडे, गोल हो चुका है, उसके बाद अपने डिफेंस को इतना स्ट्रांग रखो कि सामने वाली ऑपोजिशन को मैच के अंदर आने का मौका ही नहीं दो. एंड दे जस्ट वेंट ऑल आउट ऑन द डिफेंस एंड वर एबल टू देन कीप दैट लीड मेंटेन टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी लास्ट सेकेंड, एंड देयर बाय हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू ऑल आवर लवली लिसनर्स. Because the Indian women's hockey team has bought us that gold after 44 years.
1: आज का छठा स्वर्ण पदक, आज का दिन तो गजब रहा है भारतीयों के लिए पदकों के हिसाब से.
0: Yes, a quick wrap on the medal table also over here. इसके साथ ही आज अब भारत के सारे इवेंट समाप्त हो गए. भारत की पोजीशन अब पांचवें स्थान पर है, जिसमें है उनके पास 16 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 76 मेडल्स. आपको बता दें आज जो मेडल्स आए हैं, हॉकी में हमारे पास एक गोल्ड आ गया, बॉक्सिंग में हमारे पास 3 गोल्ड आए, रेसलिंग में 1 गोल्ड आया, आर्चरी में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, सेलिंग में 1 bronze, or sepak takraw mein ek bronze, which makes it a total of 16 gold, placing India on the 5th position. That is all that we had for you for right now. This is me, Sakshi Mandwal, and Anupam Pathak signing off. We'll be joining you back at the 7:30 update with all the live updates and a wrap up of the day. Thank you so much.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक। फ्राइडे इवनिंग सेगमेंट रहता है आपके लिए, कौन सा?
0: सेल्यूलॉइड सुपरहिट्स।
1: यस, सेल्यूलॉइड सुपरहिट्स। और सेल्यूलॉइड सुपरहिट्स में बहुत सारी फिल्मों का जिक्र करूंगी, उन फिल्मों से बहुत सारे गाने भी सुनाऊंगी आपको, और ये सब इसी सफर में होगा जिसका नाम है छायालोक। रहूंगी आपके साथ 8 बजे तक, लेकिन 7:30 बजे आपके लिए रहेगा अपडेट्स एशियन डे गेम्स से रिलेटेड, और एफएम अपडेट्स रहेगा और 5 मिनट का रहेगा। लेकिन उसके अलावा, वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए क्योंकि देश के गौरव की बात है, खेलकूद की बात है, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी इस गीत के साथ। अच्छा चलिए, पहले कुछ बता ही देती हूँ, यूं ही अगर गीत सुना दूं तो मजा नहीं आएगा। बता देती हूँ कि ये जो गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, इसे हमने लिया है फिल्म साजन से। फिल्म साजन रिलीज हुई थी इन द ईयर 1991। ब्लॉकबस्टर सुपरहिट होने के पीछे बहुत सारे कारण थे, बेहतरीन संगीत, दमदार स्टार कास्ट और भावनात्मक प्रेम कहानी। सुपरहिट संगीत, एवरग्रीन म्यूजिक, नदीम श्रवण द्वारा रचित और समीर द्वारा लिखे गए गाने, इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी थी तुमसे मिलने की तमन्ना है। बहुत सारे गाने थे, बहुत प्यार करते हैं, जिए तो जिए कैसे, जैसे सारे के सारे गाने जबरदस्त हिट रहे और आज भी लोगों के जुबान पर हैं। लोकप्रिय स्टारकास्ट और तिगड़ी फिल्म में संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की मुख्य तिगड़ी लोगों को बहुत पसंद आई और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। और फिलहाल देर ना करते हुए सुनते हैं उस गीत को जिसके बोल हैं तुमसे मिलने की तमन्ना है। एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में इस गीत को सुनेंगे।

से पहले संजय दत्त को मुख्य रूप से एक्शन हीरो के रूप में देखा जाता था। साजन में एक संवेदनशील, शर्मीले और शायर अमन सागर के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें एक रोमांटिक स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। भावनात्मक कहानी और लव ट्रायंगल, फिल्म की कहानी दोस्ती, प्यार और बलिदान के इर्द गिर्द घूमती है। दो दोस्तों के मतलब क्या बताएं, दो दोस्तों का एक ही लड़की से प्यार और फिर एक दूसरे के लिए प्यार का त्याग करना दर्शकों के दिलों में मतलब इस गहराई से छू गई ये बात कि मतलब क्या ही कहने, शायद यही ये भी एक मुख्य कारण था इस फिल्म के हिट होने में। और पोएटिक डायलॉग्स, भला इसे कैसे भूल सकते हैं, काव्यात्मक संवाद जो थे रीमा राकेश नाथ द्वारा लिखे गए, फिल्म के संवाद काफी काव्यात्मक और असरदार थे जो कहानी के रोमांटिक और इमोशनल मूड के साथ पूरी तरह मेल खाते थे। हाँ हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और आप भी अपने कुछ प्रोग्राम के पहले लिस्ट बनाए होंगे फिल्मों के बारे में कि कौन कौन से फिल्म का मैं जिक्र करने वाली हूँ, हो सकता है कुछ मैच भी कर जाए। वैसे बता दूं कि अगला गाना जो मैं आपको सुनवाऊंगी उसे हमने लिया है फिल्म तेजाब से। तेजाब सुपर डुपर हिट फिल्म रही, माधुरी दीक्षित का रातों रात स्टार बनना, इस फिल्म का गाना 1 2 3 देश भर में ऐसा सुपर हिट हुआ कि मोहिनी का किरदार निभा रही माधुरी दीक्षित रातों रात स्टार बन उनको स्टार बना दिया और वो घर घर की पहचान जो है वो बन गई थी और मतलब हर घर में लोग उनको पहचानने लगे थे। सरोज खान की कोरियोग्राफी और अलका याग्निक की आवाज ने इस गाने को ऐतिहासिक बना दिया। अनिल कपूर का दमदार अभिनय, फिल्म में मुन्ना महेश देशमुख के रूप में अनिल कपूर का एक्शन और इमोशनल अवतार दर्शकों को बहुत पसंद आया। मिस्टर इंडिया के बाद इस फिल्म ने अनिल कपूर के स्टारडम को अधिक मजबूत कर दिया। एन चंद्रा का शानदार निर्देशन भी रहा, निर्देशक एन चंद्रा की कहानी कहने की शैली किसी मतलब क्या कहूं कि मतलब ऐसी उनकी पटकथा और एक्शन ड्रामा का मेल दर्शकों को सीधे जोड़ता है। अंकुश और प्रतिघात के बाद एन चंद्रा की ये लगातार तीसरी सफल फिल्म थी बॉक्स ऑफिस हैट्रिक। और संगीत के बारे में क्या कहूं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुपरहिट संगीत 1 2 3 4 के अलावा फिल्म का गाना सो गया ये जहां भी बेहद लोकप्रिय हुआ था। और दमदार सह कलाकार की भी बात कहनी पड़ेगी, फिल्म में अनुपम खेर मोहिनी के शराबी पिता श्याम लाल के रूप में, चंकी पांडे बब्बन के किरदार में जैसे कलाकारों के अभिनय ने कहानी में जान डाल दी। क्लासिक मसाला फिल्म, ये फिल्म उस दौर की है, उस दौर की एक बेहतरीन मसाला फिल्म थी जिसमें जबरदस्त एक्शन, रोमांस, मजबूत इमोशन और विलन लोटिया पठान का खौफ एक साथ देखने को मिला। सिनेमाघरों में ये फिल्म 50 हफ्तों से ज्यादा चली। गोल्डन जुबली 1988 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर 1 फिल्म बनी। तो चलिए देना करते हुए साथ में सुनते हैं और गाते हैं क्या 1 2 3 4।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज में इस गीत को आपने सुना फिल्म तेजाब से, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब नेक्स्ट फिल्म कौन सी है सुपरहिट सेलुलॉइड्स में, वो है वो फिल्म जो रिलीज हुई थी 1990 में, ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल। बॉक्स ऑफिस पर कमाई, गाने और जोड़ी की केमिस्ट्री के मामले में बहुत बड़ी हिट रही। बॉक्स ऑफिस कमाई की बात करूं तो ये साल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म थी। कम बजट में बनकर इसे सिनेमा घरों में जबरदस्त कमाई की थी इस फिल्म ने। सुपरहिट संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित इस फिल्म के गाने देश भर में छा गए थे। मुझे नींद ना आए, खंबे जैसी खड़ी है, दम दमा दम दम जैसे गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। माधुरी और आमिर खान की केमिस्ट्री, मुख्य कलाकार आमिर खान और माधुरी दीक्षित की नोक झोंक और रोमांटिक जोड़ी को दर्शकों का अभूतपूर्व प्यार मिला। इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला था। और लोकप्रिय कहानी दुश्मनी से प्यार और माता पिता के अहंकार से जुड़ी ये पारिवारिक प्रेम कहानी उस दौर के दर्शकों के दिलों में उतर गई थी। तो देर न करते हुए सुनती हूँ, सुनवाती हूँ, मतलब हम भी तो सुनेंगे ना आपके साथ साथ, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में उस गीत को जिसके बोल हैं मुझे नींद ना आए।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे पीरियोडिक एफएम अपडेट्स 28th एशियन गेम्स 2026।
1: बीसवें एशियाई खेलों पर आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। और भारत के लिहाज से देखें अगर तो आज की स्पर्धाएं समाप्त हो चुकी हैं और बहुत शानदार दिन रहा है आज, बल्कि अब तक इनके इन एशियाई खेलों में आज का सबसे बढ़िया दिन कहा जाएगा, क्योंकि 6 स्वर्ण पदक आए हैं, 2 रजत पदक आए हैं, 2 कांस्य पदक आए हैं। एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है, महिला हॉकी का 1 स्वर्ण पदक, और इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते भारत की टीम जो है, महिलाओं की टीम, उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में सीधे प्रवेश मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। अब 2 साल होगा भारतीय टीम को तैयारियां करने के लिए मिलेगा, नए कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए मिलेगा, यानी पूरी तरह चाक चौबस्त होकर टीम जा सकती है। जबरदस्त मैच था, भारत ने बिल्कुल अलग रणनीति के साथ खेला। इसके पहले भारत ने गोलों की झड़ी लगा रखी थी पूल के मैचों में, लेकिन यहाँ पर आज चीन की जबरदस्त टीम सामने थी। चीन की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको उन्होंने जारी रखा। चीन को बिल्कुल उन्होंने कहना चाहिए आड़े हाथों लिया। अच्छी बात यह रही कि पहले क्वार्टर में ही भारत को मौका मिला, और क्या शानदार, शायद टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल कहा जाएगा, लाल रंग सियामी ने किया। रिवर्स स्टिक से बहुत शानदार रिवर्स शॉट लगाया था उन्होंने, थोड़ा उठता हुआ बिल्कुल गोलकीपर को चकमा देता हुआ पहुंच गया था। उसके बाद से भारत ने अपनी रणनीति यह बदली कि पूरी तरह डिफेंस पे आ गए। इस

0: एक गोल की लीड को, हॉकी में बहुत गोल होते हैं हम सब जानते हैं, उसको उन्होंने लगभग 3.5 क्वार्टर तक बनाए रखा। चीन ने बहुत आक्रमण किए, लेकिन आखिरकार वो फेल होता रहा, क्योंकि भारतीय लड़कियों का डिफेंस बहुत मजबूत था। सुशीला ने बहुत अच्छा किया, नवनीत कौर ने बहुत शानदार किया। कुल मिलाकर स्थिति ये आ गई कि आखिरी के करीब 4 मिनट तो गोलकीपर को ही हटा दिया गया, यानी 11 के 11 खिलाड़ी आक्रमण करेंगे, चीन के लिए गोल आए, तब भी भारतीयों ने आपा नहीं खोया, सिर्फ एक मूव बनाया, उनको समय बिताना था वो 3.5 मिनट। शानदार मैच रहा हॉकी का। स्वर्ण पदक, अब देखना है कल भारत की टीम भी पुरुषों की, वो भी स्वर्ण पदक लेकर आए तो खुशी दुगनी हो जाएगी, पदकों की जोड़ी बन जाएगी। इसके पहले आज बहुत शानदार दिन बॉक्सिंग में रहा, लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता, एशियन गेम्स का अपना ये पहला स्वर्ण पदक उनके लिए था, मणिपुर की हैं। शानदार तरीके से उन्होंने आज अपनी फाइट लड़ी, बाउट लड़ी, 5-0 तीनों राउंड में लगातार उन्होंने प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा परवीन हुडा का स्वर्ण पदक था, थोड़ा मुश्किल से आया, 3-2 का स्प्लिट डिसीजन था, लेकिन परवीन जैसी आक्रामक वो खेलती हैं बिल्कुल वैसे ही रही, ताइपे की नीन चिन येन के विरुद्ध थी और उन्होंने भी दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। तीसरी बाउट में अंकुश पंघाल थे, हरियाणा से ही आते हैं, सेना में नौकरी करते हैं। अंकुश पंघाल ने अपने ऊपर काबू रखा, अपने स्टाइल को बिल्कुल नहीं चेंज किया, वो साउथ पा हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मुक्के बरसाए और उन्होंने भी इस बाउट को जीत कर भारत के लिए बॉक्सिंग में आज का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया 80 किलोग्राम में। आर्चरी में भारत की महिला टीम ने अंकिता भगत, कुमकुम महोद और कीर्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक पाया और सिल्वर आया मिश्रित में धीरज देवोमरा और कुमकुम महोद के साथ, और इसके अलावा धीरज यशदीप भागे और नीरज चौहान की जोड़ी ने ईरान को परास्त करके पहले प्रवेश किया फाइनल में। वहां पर दक्षिण कोरिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, उससे वो परास्त हुए लेकिन रजत पदक पाया। कुश्ती में बहुत खास दिन रहा, इसलिए दीपांशी की पहले बात कर लें, बहुत नई लड़की है, बिल्कुल उभरती हुई लड़की है, 50 किलोग्राम भार वर्ग में वो पहली अपनी बाउट जापान की सुशाई यूई से हार गई, लेकिन उसके बाद उनको रिपेचेस में मौका मिला, उन्होंने अपनी बाउट जीती, ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला किया, लेकिन कजाक की जिनेब बायानोवा से परास्त हुई। उसके बाद 65 किलोग्राम वर्ग में अकल्पनीय चीज करके दिखाई सुजीत कलकल ने, 2-9 से पीछे होने के बाद भी, यानी बिल्कुल हर एक को लगने लगा था ये बाउट तो गई, ये कुश्ती तो सुजीत के हाथ से गई और स्वर्ण पदक तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या वापसी की है, कहते ना एकदम जब बिल्कुल आप एकदम कोने पर पहुंच गए हैं, गिरने वाले हैं, कगार पे आ गए हार के, वहां से उन्होंने वापसी की, लगातार 8 अंक कमाए और सुजीत कलकल का ये स्वर्ण पदक बहुत बहुत दिनों तक बहुत याद रहेगा। इसके अलावा और भी भारत की ओर से बहुत अच्छी कुछ प्रदर्शन रहे हैं। सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने डिंगी में, उन्होंने जो पहले कहलाती थी लेजर रेस कहाया करती थी ICLA की स्पर्धा, उसमें उन्होंने कांस्य पदक पाया। सिपक टोकरा में भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन रहा है भारत के लिए। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कल के, कल क्रिकेट का मैच है, फाइनल मैच है पाकिस्तान के विरुद्ध, हॉकी में मलेशिया के विरुद्ध पुरुष की टीम उतरेगी, आर्चरी में कुमकुम महोद, धीरज देव बुमराह और नीरज चौहान कोशिश करेंगे स्वर्ण पदक पाने की, कुश्ती में 5 पहलवान हैं, सागर जगलान, अंतिम पंघाल, अमन, दीपक पुनिया, मनीषा। इसके अलावा गोल्फ में प्रणवी क्या करती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं भारत के लिए। R7, Rugby 7, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल में भी होंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छे स्थान पर आ गई है, 5वें स्थान पर आ गई है, 16 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 35 कांस्य पदकों के साथ 76 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। तो अब आपको ये बताते हुए कि हम कल फिर हाजिर होंगे 9:30 बजे अपने इस अपडेट की श्रृंखला के साथ। अब अनुपम पाठक यानी मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: इंडिया का जो प्रदर्शन था काबिले तारीफ थी, और ऐसे में भला हम ये गाना ना सुने तो बात बनती नहीं है। चलिए बात को बनाते हैं और खुशी और जश्न को जो है इस माहौल को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

ये पेट्रियोटिक गीत मैंने उन सारे खिलाड़ियों को डेडिकेट किया जो 28th एशियन गेम्स 2026 में आज के दिन भारत के लिए पदक जीते। और आपको बता दूं कि इस गीत को आपने सुना सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर, विजय प्रकाश की आवाज़ में। गुलजार और तन्वी शाह ने कलमबद किया इस गीत को, A.R. रहमान के संगीत, और फिल्म का नाम स्लम डॉग मिलियनेयर। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगी कि एक फिल्म रिलीज हुई थी, एक या कई फिल्म रिलीज हुए थे, लेकिन मैं जिस फिल्म का की बात कर रही हूँ वो है राजा हिंदुस्तानी। रिलीज हुई थी इन द ईयर 1996 और फिल्म काफी हिट रही। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म का संगीत नदीम श्रवण, ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी ये फिल्म। और अमीर और गरीब के बीच प्रेम कहानी तथा करिश्मा कपूर का मेक ओवर इस फिल्म की सफलता का मुख्य आधार था।

म्यूजिकल ईयर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कौन सा छायालोक सेगमेंट सेलुलॉइड सुपरहिट। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि छायालोक मतलब म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। और आपको बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:48 और अभी जो 12 मिनट बचा है ना, इसमें दो और रोमांटिक गाने आप तक पहुंचाऊंगी मैं। पहला वाला जो गाना है उसे हमने लिया है फिल्म दिल तो पागल है से। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1997 और इसके सुपर हिट होने के कारण भी बहुत सारे यश चोपड़ा का सदाबहार रोमांस, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान का डांस मुकाबला और करिश्मा कपूर का बेहतरीन अभिनय, फिल्म का संगीत और आधुनिक कोरियोग्राफी उस समय के हिसाब से काफी ट्रेंडी थी।

जी हाँ, जब भी आप जुड़ते हैं 107 एफएम रेडियो से तो एक अफसाना तो बनता ही है। वो अफसाना ये होता है कि हम कहीं ना कहीं और करीब आते हैं 107 एफएम रेनबो के और जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अब समय उछला है कि मैं कार्यक्रम को विराम दूं, लेकिन चलते चलते जिक्र करना चाहूंगी फिल्म कबीर सिंह का, जो कि सुपरहिट हुई और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई हुई थी। लगभग 379 करोड़ की जो है कमाई हुई थी, और इसके पीछे कई सारे मुख्य कारण थे, जैसे कि पावरफुल एक्टिंग, दमदार अभिनय था। शाहिद कपूर ने कबीर सिंह का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। गुस्से, प्यार और निराशा के भावों को उन्होंने पर्दे पर बहुत ही असरदार ढंग से पेश किया। कियारा आडवाणी ने प्रीति के रूप में सीधा सीधा और प्रभावी अभिनय किया था। और रीमेक ऑफ अर्जुन रेड्डी, ये फिल्म सुपरहिट तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। और लोकप्रिय संगीत, फिल्म के गाने जैसे बेख्याली, तुझे कितना चाहने लगा हूं, मेरे सोनिया चार्ट बस्टर साबित हुए। गाने ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया था। इंटेंस लव स्टोरी थी। और फिलहाल आप सभी से सुलक्षणा, आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, इजाजत लेगी, आज्ञा लेगी, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। वैसे आज, कल और परसों तीनों दिन आपसे मिलते रही, जुड़ते रही दिल से दिल तक, ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है मेरे लिए। और यूं ही आगे भी आपसे मिलते रहूंगी। चलते चलते यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल खिलाते रहिए, बिखेरते रहिए। और क्या, 8:02 से प्रीति मुरारका रहेंगी आपके साथ लेकर कार्यक्रम छायालोक। तो चलते चलते यही कहूंगी, जुड़े रहिए, साथ रहिए, बने रहिए दिल से दिल तक वाले चैनल के साथ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: एक सौ सात FM रेनबो पर आप सभी का स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रीति। और घड़ी में अभी वक्त हो चुके हैं रात के 8:03 और 48 सेकेंड। सो मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति, लेकर आई हूँ आपका अपना कार्यक्रम छायालोक। कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और हमारे देश के इतिहास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। आज का दिन उन दो महान विभूतियों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश को सत्य, सादगी और स्वाभिमान का सच्चार सिखाया था। एक तरफ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व को नई दिशा दिखाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो दूसरी तरफ अपनी सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान के नारे से पूरे देश में नया जोश भरने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज इन दो महापुरुषों की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी पावन दिन को याद करते हुए और सुनते हैं इस गीत को।

वक्त तो चला है 8:09 और इस गीत के बाद अब वक्त है इस शाम की रफ्तार को थोड़ा आगे बढ़ाने का। दिन भर की सारी थकान को भूल जाइए, क्योंकि अब अगले कुछ वक्त हम और आप मिलकर सजाएंगे बातों और गानों की खूबसूरत सी महफिल। और हाँ, महफिल की शुरुआत करते एक बहुत ही प्यारे और छोटे से सवाल के साथ, क्योंकि जब आप हमारे पास आएंगे अपनी फरमाइश लेकर और हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे, तो आपको अभी तो फर्ज बनता है ना कि मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देने का। तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि आज के दिन, यानी आप कुछ बच्चे छुट्टी मना रहे हैं या फिर कुछ ऑफिस में छुट्टी थी, कुछ में नहीं थी, जो भी था, कि शाम के इस वक्त ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है, या फिर अगर मैं कहूँ कि बचपन की वो कौन सी याद है, या फिर और थोड़ा सा और प्रिसाइज करो तो बोलूँ कि ऐसा कौन सा खेल या आदत है जिसे आज आप बहुत याद करते हैं और मौका मिलने पर आज भी खेलना चाहेंगे या फिर उस आदत को फिर से रिपीट करना चाहेंगे, तो बताइएगा मुझे ज़रूर। हमारा नंबर है 2213-1341 और अपनी फरमाइश के साथ सोच कर भी ज़रूर आइएगा, है ना।

0: चलिए अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं हावड़ा बुहारिया से तन्मय मखल बात कर रहा हूँ।
2: हाँ जी तन्मय जी, बताइए। थोड़ा स्लो, फोन से थोड़ा दूर रखिए।
1: ठीक है, रुकिए एक मिनट रुकिए।
2: हाँ जी रुकिए भी। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज इको हो रही है, आपको इको सुनाई दे रही है?
1: देखिए आप कैसा लग रहा है।
2: हाँ जी बोलिए
1: मैडम, कैसा है घर परिवार सब, कैसा है, क्या हाल चाल है?
2: सब बढ़िया, सब बढ़िया, एकदम मस्त। आप बताइए कि आप सबसे पहले ये तो बताइए कि आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: इंसान मूवी का।
2: ओके,
1: इंसान मूवी का खाई।
2: ओके, और मैंने एक सवाल किया था, है ना, कि बचपन की कोई याद या फिर कोई ऐसा गेम जो आपको अभी मौका मिले तो आप अभी खेलना चाहेंगे?
1: बचपन में तो मैं कार्टून

0: था।
1: चलो ये तब तो फिर कोई सवाल बन गया, मतलब कार्टून देखते देखते ही आप बड़े हुए। ओके, तो अभी करते क्या?
0: अभी मैं डाइविंग सीख रहा हूँ।
1: क्या सीख रहे?
0: डाइविंग करना।
1: ओके,
0: डाइविंग पर हो।
1: ओके, बहुत अच्छी बात है, आप इसमें

क्लियर नहीं आ रही थी आवाज़, तो चलिए इनकी फरमाइश पर हम ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि दिल की ख्वाहिशें भी बड़ी अजीब होती है ना। किसी को पाने की चाहत में लव्स कम पड़ जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हाल था फिल्म इंसान में, जब कहा गया था कि ख्वाहिशों पर भला किसका जोर चला है। तो चलिए इस खुशनुमा एहसास को महसूस करते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में इस गीत को।

आइए आप सुनते हैं शांतनु घोष, हावड़ा बावरिया से उन्होंने फरमाइश ले दी है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में एक गीत की सुनने की। वो भी फिल्म है आज का अर्जुन, और इस गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने और गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। हमारा नंबर है 2213-1341। ये नंबर डायल कर आप हम तक पहुंच सकते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ में एक सवाल का जवाब भी कि बचपन में खेला हुआ कौन सा खेल ऐसा है जो आपको अभी भी याद दिलाता है, तो ये प्रश्न का जवाब लेकर जरूर आइएगा अपनी फरमाइश के साथ। तो हमारे साथ जुड़े थे अभी मनुद्दीन लश्कर और उन्होंने सुनना चाहे एक जान है हमसे एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की, सॉरी आशा भोसले और शबीर कुमार की आवाज़ में।

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

वक्त तो चले हैं 8:57 और प्रीति का जाने का भी वक्त हो चला है। जाते जाते बस इतना ही कहेगी कि खुश रखिए और खुश रहिए। इसी के साथ प्रीति आप सभी से कहती है टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो।

0: लपक झपक तू वार बदरवा बरस बरस तू कार बदरवा लपक झपक लपक झपक लपक झपक
1: तू आ दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना